0: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जप जी साहब एक ओंकार सतनाम का, एक ओंकार सतनाम का जप निर्भय वेद अकामर अचिन्ह सहबंग गुप सचप आज सच का सच है भी सच नानक सी भी सच सोचे सोच न होवे चे सोचे लकवार छुपे छुप न होवे चे लाए रहा लिपार बुकिया बुक न उतरे चे पा न पुरिया बार सहज सियान पर लग हो है चेक न चले ना क्यों सचारा हो या क्यों कर टूटे पाँव हुक्म जाए चालना नानक लिखिया नाम हुक्मी होवे न काम हुक्म न कहिया जाए हुक्मी होवन जी हुक्म ले बढ़ियाए हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाए एक न हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा बभाए हुक्मी अंदर सब को बाहर हुक्म न कोई नानक हुक्मे जे बुझे ताहो में कह न कोय कावे को ठान होवे किसे ठन कावे को ठान जाने निशान कावे को गुण वली आय अचार कावे को विद्या विकम विचार कावे को साश करे तंके कावे को जे लाफे डे कावे को चापे जिसे दूर कावे को वे के हदरा दूर कत न कती न आवे तोट कत कत कती कोट कोट कोट दिन दन दिन लन दिन तक पाए चुगा चुगा ते काहे काहे हुक्मी हुक्म चलाए राओ नानक विक्से वे पवाओ सच साई बत सच नाई भग पाओ आके मंगे ते ते दाख रे रताए फेर क्या के रखिया चित से निर्भर मोहन की बोलम बोलिया चित सुंदर प्यार अमृत वेल सच नाम प्रियाय विचार कर में आवे खपरा न त्री मुक्तवार नाने के वे जानिए सब पापे सचियार तपे न जाए कि तना होए जिन से भी तिम पाया मन गाविये सुनिए मन रखिए बाऊ गमक नारंग गमक वेरंग गमक रंग समाय जय हो जाना कनाही कहना खत न जाए सवना जी का एक दाता सौ में विस न जाए जय ती सिर तु पाए वेखा विंकार में की मिल लई गुराय के दे बुझाए जय जुग जाने आजा हो जो सुने होए चंग नाव खाए के जस की रचक लई कीर्तन कीर्त कर दोसी दोस्त रे देह कोई न सुची चेतिस गुन कोई करे सुनिए दर तब लकाश सुनिए पोह न सके कांग सुनिए दुख पाप का नास सुनिए मुक्त लान मन सुनिए शास्त्र चिमरत वे सुनिए दुख पाप का नास सुनिए अच्छा काश नान सुनिए लागे सहज ध्यान सुनिए दुख पाप का नास सुनिए शेख पीर पदशाह सुनिए हाथों वे असका Sunyedu Gapapkanas
1: Manekigatkahina Jai
0: Cheko Kehepachepachitai
1: Kagat Kalanakanahan
0: Manekabe Karabichan
1: Atsanhan Ranjan Hoi
0: Cheko Manjane Manakoi
1: Mane Surupove Manbud
0: Mane Sago Bamakisud
1: Mane Moe Chotanakai
0: Mane Janke Satana Jaim Jeko manjane merkoi.
1: Mane mare takana pae.
0: Mane patsio paga chaim.
1: Mane magra chale pan.
0: Mane dharam siti samban.
1: Atsana naranjan hoi.
0: Jeko manjane merkoi.
1: Mane pave muktuar.
0: Mane pava resadar.
1: Mane tare tare vrsik.
0: Mane nanek pavanabik.
1: Atsana naranjan hoi.
0: Jeko manjane merkoi.
1: Panche
0: pave doge man.
1: Panche sohe darajan.
0: Panche kagariktian.
1: Jeko kahe kare vichar.
0: Karte ke karne nahi saman.
1: Daldaram dia kapu.
0: Santok taprakya jinsu.
1: Jeko huje hove sachyar.
0: Dable uparketa ban.
1: Darti hor pare horbor.
0: Tiste bar tele kavanjan. Sabana likya vadi kalam.
1: Eho lik jane koi.
0: Leka likya keta hoi.
1: Keta tan sualiya.
0: Keti da chane konkud.
1: Kita pasa hoi kokabal.
0: Tiste hoi laktaniya.
1: Kudrat kavan kahavi char.
0: Vadiya na java ekavar.
1: Jo turbabe sahi bamikar.
0: Tu sada salamat nirankar. Asank puja sanktaptam.
1: Asank grant mudvetam.
0: Asank job monahe udas.
1: Asank bhagat kungiyan vichar.
0: Asank sati asanktartar.
1: Asank sur mohatsar.
0: Asank mon live lightar.
1: Kudrat kavankaha vichar.
0: Vadiyana java ekvar.
1: Jol turbabe sahi malikar.
0: Tu sada salamad nirankar.
1: Asank
0: Asankha haram korn.
1: Asankha mara karajai jor.
0: Asankha varhatya kamayim.
1: Asankha papi pap karajai.
0: Asankha riyar kanefirai.
1: Asankha malay chival bakai.
0: Asankha nindaksu karibarn.
1: Nanaka nich kahe vichar.
0: Vadiyana java ekvar.
1: Jo turbabe sahi malikar.
0: Tu sada salamat nirankar.
1: Asankha nava sankha.
0: Agam agam sankalom.
1: Asankha sirvaramoli.
0: Akri nama kri salam.
1: Akri hiyan vitagunaga.
0: Akri likam bolam ban.
1: Akra sir sanjo vitan.
0: Jene like tisir nahi.
1: Jethra mahi tiptipa.
0: Jeta kita teta nam.
1: Vinna vena hi kota.
0: Kudra kavan kaha vichan.
1: Jau
0: turbhavi saibhalikar.
1: Tu sira salamat nirankar.
0: Variyahat pirtande.
1: Pane dote utrasake.
0: Mupliti kaparahoy.
1: Desavun leha odoy.
0: Variyama papake sang.
1: Odope nave keran.
0: Puni papi akanahi.
1: Kar kar kar nalik meja.
0: Ape bishapehi kaum. Tira tap the adatan.
1: Jeko pave tilkaman.
0: Sunyamaniyaman kita bal.
1: Antar patrat mauna.
0: Sabgun teni menahi koi.
1: Vengun kite bagat nahoi.
0: Swasta pani barmao.
1: Sat sohan saramancha.
0: Kaman suvela vaka kaman. Kaman titta kaman avan.
1: Kaman seruti mao.
0: Velna paya panditi Jehove lek puran.
1: Vagatna paya kadia Jelekan lek puran.
0: Tidvarna jogi jane rudmaho na koi.
1: Jakarta sirti kosa jayape jane soi.
0: Kivkaraka kivsa lahi kyavirni kiv jana.
1: Nanaka kinsapko ake ikadu
0: iksiana. Vardarsai vardinai. Kita jako ve.
1: Nanak
0: Pantala Pantala Kagasa Gas Says the Tarikan Kateba Asalu Kadan Nanak Vada Kia Ape Jani Ap Nadia Teva Pavesaman Jani Kidney to now, Vinny J. Tismanana visiting. Antona Karna Dena,
1: Antona Vekan Sunanda,
0: Antona Jape Kyaman,
1: Antona Jape Kita,
0: Antona Jape Paravan,
1: Antakaran Kete Vilai,
0: Take Antna Pai Jai,
1: Antona Jane Koi,
0: Bota Kea Bota Hoi. Uche Poducena Tisuche Kojani Suing Nanak Nadri Karni Dan Varda Data Tilnat Mai
1: Kete Mange Jodapai
0: Kete Aganahi Vichan
1: Kete Kaptute Vekai
0: Kete Lele Mukurpai Ketia duka buksad mar.
1: Ebi da teri da tar.
0: Ban kalasi bani hoi.
1: Or apna sake koi.
0: Jeko kai kakan pai.
1: O jane jeti amoi kai.
0: Ape jane ape de.
1: Ake sebi ke ke.
0: Jisano bakshe sivat salah.